0: Apa yang ada di benak Anda ketika melihat seseorang yang memiliki kelenturan tubuh luar biasa? Seram atau menakjubkan? Seperti pria satu ini. Perkenalkan, ia adalah Sayam Haider. Orang-orang menjulukinya sebagai Rubber Boy of Kashmir, seorang kontorsionis, penari, sekaligus instruktur yoga asal Kashmir Utara, India. Dengan kelenturan tubuhnya, ia bisa memutar kepala hingga 180 derajat, bahkan mampu memasukkan seluruh tubuhnya melalui raket tenis yang senarnya telah dilepas. Menakjubkan. Kemampuan yang ia miliki tentu tidak instan, melainkan melalui proses latihan bertahun-tahun. Atas kemampuannya itu, ia mendapatkan pengakuan dari International Book of Records loh. Dengan memegang 4 rekor buku internasional, 1 rekor influencer, 1 gelar dari Bharat Book of Records, serta berhasil tampil di acara India's Got Talent.
1: और इस चीज को मुझे मास्टर करने में लगभग 10 साल लगे और मैं YouTube पे वीडियोस देखता था और घर में प्रैक्टिस करता था और उसके बाद मैंने एक सर कंप्लीट किया लगभग 10 साल तो मुझे लाइफ में कुछ अलग करना था मतलब डिफरेंट यूनिक जिससे मुझे लोग पहचाने किसी नाम से और अल्लाह का शुक्र है तो अभी मुझे रबर भाई के नाम से जानते हैं और बहुत सारे ऐसे वीडियोस है जो मुझे मतलब बाहर में फॉरेन में मतलब जैसे वीडियोस अभी जा रहे सर
0: ia mengaku pernah mengalami patah tulang lengan saat menjalani latihan namun cedera tersebut tidak menghentikannya bagi Haider kelenturan tubuh bukan sekedar pertunjukan. Kemampuan itu merupakan hasil dari latihan panjang, cedera, ketekunan, dan ambisi untuk membawa namanya ke panggung internasional.

0: Apa yang ada di benak Anda ketika melihat seseorang yang memiliki kelenturan tubuh luar biasa? Seram atau menakjubkan? Seperti pria satu ini, perkenalkan, ia adalah Sayam Haider. Orang-orang menjulukinya sebagai Rubber Boy of Kashmir, seorang kontorsionis, penari, sekaligus instruktur yoga asal Kashmir Utara, India. Dengan kelenturan tubuhnya, ia bisa memutar kepala hingga 180 derajat, bahkan mampu memasukkan seluruh tubuhnya melalui raket tenis yang senarnya telah dilepas. Menakjubkan. Kemampuan yang ia miliki tentu tidak instan, melainkan melalui proses latihan bertahun-tahun. Atas kemampuannya itu, ia mendapatkan pengakuan dari International Book of Records loh. Dengan memegang 4 rekor buku internasional, 1 rekor influencer, 1 gelar dari Bharat Book of Records, serta berhasil tampil di acara India's Got Talent.
1: और इस चीज को मुझे मास्टर करने में लगभग 10 साल लगे और मैं YouTube पे वीडियोस देखता था और घर में प्रैक्टिस करता था और उसके बाद मैंने एक सर कंप्लीट किया लगभग 10 साल तो मुझे लाइफ में कुछ अलग करना था मतलब डिफरेंट यूनिक जिससे मुझे लोग पहचाने किसी नाम से और अल्लाह का शुक्र है तो अभी मुझे रबर भाई के नाम से जानते हैं और बहुत सारे ऐसे वीडियोस है जो मुझे मतलब बाहर में फॉरेन में मतलब जैसे वीडियोस अभी जा रहे सर
0: ia mengaku pernah mengalami patah tulang lengan saat menjalani latihan namun cedera tersebut tidak menghentikannya bagi Haider kelenturan tubuh bukan sekedar pertunjukan. Kemampuan itu merupakan hasil dari latihan panjang, cedera, ketekunan, dan ambisi untuk membawa namanya ke panggung internasional.

0: Apa yang ada di benak Anda ketika melihat seseorang yang memiliki kelenturan tubuh luar biasa? Seram atau menakjubkan? Seperti pria satu ini, perkenalkan, ia adalah Sayam Haider. Orang-orang menjulukinya sebagai Rubber Boy of Kashmir, seorang kontorsionis, penari, sekaligus instruktur yoga asal Kashmir Utara, India. Dengan kelenturan tubuhnya, ia bisa memutar kepala hingga 180 derajat, bahkan mampu memasukkan seluruh tubuhnya melalui raket tenis yang senarnya telah dilepas. Menakjubkan. Kemampuan yang ia miliki tentu tidak instan, melainkan melalui proses latihan bertahun-tahun. Atas kemampuannya itu, ia mendapatkan pengakuan dari International Book of Records loh. Dengan memegang 4 rekor buku internasional, 1 rekor influencer, 1 gelar dari Bharat Book of Records, serta berhasil tampil di acara India's Got Talent.
1: और इस चीज को मुझे मास्टर करने में लगभग 10 साल लगे और मैं YouTube पे वीडियोस देखता था और घर में प्रैक्टिस करता था और उसके बाद मैंने एक सर कंप्लीट किया लगभग 10 साल लगे मुझे लाइफ में कुछ अलग करना था मतलब डिफरेंट यूनिक जिससे मुझे लोग पहचाने किसी नाम से और अल्लाह का शुक्र है तो अभी मुझे रबर भाई के नाम से जानते हैं और बहुत सारे ऐसे वीडियोस है जो मुझे मतलब बाहर में फॉरेन में मतलब जैसे वीडियोस अभी जा रहे हैं सर
0: ia mengaku pernah mengalami patah tulang lengan saat menjalani latihan namun cedera tersebut tidak menghentikannya bagi Haider kelenturan tubuh bukan sekedar pertunjukan kemampuan itu merupakan hasil dari latihan panjang, cedera, ketekunan, dan ambisi untuk membawa namanya ke panggung internasional.